0: फिर भी मोरे जिया राम चमके, अरे थम थम कोई बिझुरिया।
1: वाह वाह वाह, तुहार जवाब नहीं

0: is Leica Gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
3: We're finally going home for the wedding.
4: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
5: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
4: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
5: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
4: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
5: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
0: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
6: Classic Melody. Aapke apne Leica Gold par.

0: जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।

से परी ये सुबह मस्त भरी यूं हंसी जैसे परी। किस्मत को शायद याद आ गए हम, किस्मत को शायद

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती सनबंध।

पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए, अक

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जा।

आहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवर।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बो लख होवें, लख होवें लखवीस, लख लख

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई।

0: Like a gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com.
2: Search is changing.
3: Customers aren't just using Google anymore.
2: They're asking AI.
3: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
2: One business, one recommendation.
3: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
2: Will your business be the answer?
3: Or the one that got left behind?
2: The future of search has already started.
3: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
2: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
5: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
6: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
7: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
8: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
7: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
8: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
9: To buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
10: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
11: Dubai is the place. 11,
10: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
12: Danube 11, 11. Danube Properties. 11.
13: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
14: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
13: ये तो बताओ कोई पता चला?
14: गुरु गुरु
15: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
13: साधु तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
16: शीघ्र शीघ्र
15: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर.
17: टू बुक कॉल 0208-514-54 Download. Book online at Eventbrite.
18: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
19: Khatro Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lionecroft.
2: Khatro Ke Khiladi.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
3: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
1: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड. मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड. रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Cool music for a super hot summertime on Leica Gold.

0: Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, at all protected.
3: It's December. Thand ko bolo, goodbye.
4: Join Maharaja Tours on a 14-night Caribbean cruise departing 6 December with direct Virgin flights from Heathrow to Barbados. Khoobsurat beaches, sunshine aur 8 amazing Caribbean islands aapka intezaar kar rahe hain. Prices from just £1,499 per person, twin share. Seats limited hai, toh aaj hi book kijiye. Visit maharajatours.co.uk or call 07956154846
3: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
5: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
4: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
6: Dubai is the place.
4: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
6: Danu 11, 11. Danu Properties.
7: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ.
8: अपना बनाया तेनू
7: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफुट टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फट टाउन हॉल में. टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20. VIP एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल. बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216. टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट 407 हाई रोड Ilford.
9: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
10: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
9: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
10: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
9: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
10: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
11: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
12: Hey there, main hoon Bali Brahmbhatt. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, unsuni baate, raag adharit gaane on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 p.m. to 4 p.m.

0: लाइका गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट ट्रेवल हब world.com
3: भक्ति संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बेक थिएटर हेज में एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक प्रभु श्री राम की लीला हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव 18 सितंबर बेक थिएटर हेज टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें shriramleela.theshowmanstudio.co.uk
4: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो एक्सपीरियंस द डिवाइन
5: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए
4: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है दिवाली स्टोरी द जर्नी ऑफ राम एंड सीता
5: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर
6: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा
5: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क
7: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
8: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 Our line.
9: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone. 11, 11.
10: Danube 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
11: Dubai is the place. 11,
10: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
12: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
13: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
14: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
15: SonaTours.co.uk special offer Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off. Call SonaTours now on 0208-951-0111.
16: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
17: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
3: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel, Atoll Protected.
5: The wait is finally over.
6: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
5: Mirzapur is coming to the big screen.
7: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
5: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
8: Abhi Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
5: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, in cinemas now.
7: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
9: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल, कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ।
10: अपना बनाया तेनू,
9: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का। वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफर्ड टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फर्ड टाउन हॉल में। टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम 20 पाउंड्स। वीआईपी एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216। टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट, 407 हाई रोड, इल्फर्ड।
11: Thank you.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
4: सदैव मर्यादा पुरुषोत्तमं लोकनाथं श्रीराम श्रीराम.
5: Diwali Story, The Journey of Ram and Sita.
6: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner Leica Radio Network.
7: Up next, Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show on Leica Gold.

0: गुड मॉर्निंग। स्वागत है संगीत प्रेमियों का मनोरंजन की महफिल में। सोमवार वर्ष 2026 के सितंबर महीने की 7 तारीख और वक्त मनोरंजन का, आपकी हमारी मुलाकात का, प्यारे प्यारे गीतों की सौगात का। माय नेम इज रवि शर्मा। सबसे पहले भाई काजल को धन्यवाद देते हैं और फिर अपना काम हाथ में लेते हैं मनोरंजन। नेक नियत की गवाही वक्त देगा आपको। हमसे सच्चे दोस्त से यारी लगा के देखिए, खुद ब खुद उठा करेंगे आपके पांव इधर। आजमाइश शर्त है, एक बार आकर देखिए। उस समय रंगीन लगती है ये दुनिया बेपनाह, प्यार आंखों में किसी का घर बसा कर देखिए। आपकी नजरों से साजिश अब मुकम्मल हो गई, अब राजे दिल को हमसे जरा छुपा कर देखिए। और किस तरह होती हैं मिलने की दुआएं सब कबूल, आप सच्चे दिल से कभी हमको बुला कर देखिए।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता।
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. Reminisce those classics on Leica Gold.
0: और Leica Gold पर शुरुआत होती है इस गीत से। भाई बहुत सारे सवाल होंगे आपके पास, शर्मा जी कहाँ गायब हो जाते हो, कभी आते हो कभी जाते हो, भाई दुनिया ही आनी जानी है, क्या करें। लेकिन इस सवाल का जवाब कि किस तरह होती है मिलने की दुआएं सब कबूल, आप सच्चे दिल से हमें जरा बुलाकर देखिए।

प्यार जिंदगी है, सचमुच। बिना प्यार के कोई जिंदा है तो भाई जिंदा नहीं होने के बराबर है। अब आप पूछेंगे, भाई इतने दिन कहाँ थे शर्मा जी? बस यही प्यार बटोर रहा था। यहाँ स्टूडियो की चार दीवारी में बैठकर एहसास तो होता है पर कोई पास नहीं होता है। आप दूर दूर जहाँ भी सुन रहे हैं स्वागत है आपका, पर आप सब की ओर से पहले तो मैं सोचता हूँ कि थैंक यू कहूँ रितु शर्मा को। जब कभी मुझे छुट्टी चाहिए वो आगे आती हैं और भाई मेरी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाती हैं और बड़ी खूबसूरती से निभाती हैं। थैंक यू वेरी मच, एक नहीं दो नहीं ढेर सारी रितु शर्मा। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं भाई, आपने मेरी जिम्मेदारी निभाई। और बहनों भाइयों, बीच में कुछ तीज त्यौहार थे, कुछ कार्यक्रम थे, कुछ लोगों से मिलना जुलना भी हुआ। थोड़े से दिनों में इतने सारे काम करके आया हूँ पर काम कभी पूरे होते नहीं। काम, मैं बार बार अपने आप को याद दिलाता हूँ कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, जुड़ जाओ मनोरंजन प्रोग्राम से। थैंक यू रितु।

0: ऐसे
1: सेट गो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स,
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियां लाए।
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सेट को माइक।
3: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
4: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
3: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
4: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
5: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
4: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
6: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
7: SonaTours.co.uk, special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call SonaTours now on 0208-951-0111.
8: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
9: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
10: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
11: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली।
12: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग, डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।
13: दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के।

क्या इशारे हो गए भाई, मुस्कुरा कर देखने से पहले थोड़ा सोच लेना, कोई भी गले पड़ सकता है ऐसे यहाँ से। हम तुम्हारे हो गए पक्का, गारंटीड। क्यों देखा मुस्कुरा के, गुस्से में देखो।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे ये गीत। और बहन भाइयों, धीरे धीरे समय हुआ जाता है समाचारों की ओर बढ़ने का। वेल, प्रिंस विलियम विल रिप्रेजेंट हिज फादर किंग चार्ल्स एट द फ्यूनरल ऑफ किंग हैराल्ड पंचम ऑफ नॉर्वे। बकिंगम पैलेस से ये सूचना आई है कि भाई राजकुमार विलियम जो है वो अपने मतलब राज्य का कहिए या राजा का प्रतिनिधित्व करेंगे नॉर्वे में, वहाँ के सम्राट की मृत्यु पर जो फ्यूनरल हो रहा है उसमें वो शिरकत करेंगे, अफसोस करेंगे जाके।
1: हो गए।
0: इसके अलावा भाई और भी कुछ खबरें हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर खबरें आप जानते हैं सब कॉन्टिनेंट की कवर करता हूँ। समय हो गया है, आइए देखते हैं क्या कुछ है आज के प्रमुख समाचारों में।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
4: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: लाइका रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज के खास खास समाचार सुनिए। नेपाल की बाढ़ में मरने वालों की तादाद 1355 हो गई है, 1355। अमेरिका के मायामी कार्गो विमान रनवे से बाहर निकला, 5 लोगों की मौत हो गई है वहां। भारत में आदित्य ठाकरे ने गरबा और डांडिया में मुसलमानों की एंट्री पर रोक को लेकर के एक बयान दिया है। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने से 1.5 लाख से भी ज्यादा मुसाफिर हवाई अड्डों पर फंस कर रह गए हैं। विस्तार से समाचार। दिल्ली के सत्यनिकेतन हादसे में दिल्ली नगर निगम साउथ जोन के 5 अफसरों को तुरंत फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम के साउथ जोन के जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है उनके नाम है राकेश कुमार डिप्टी कमिश्नर साउथ जोन, रणवीर सिंह सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साउथ जोन, ललित कुमार गोयल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साउथ जोन और सुनील चौहान ए बिल्डिंग साउथ जोन। भाई ये हादसा हुआ दिल्ली में और इसके बाद से काफ़ी छानबीन चल रही है और चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता कहती है कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। किसकी कमी से, किसकी इग्नोरेंस से, भाई किसकी गलती से ये नक्शा जो है किस तरह से पास हुआ, कैसे बिल्डिंग बनी और कैसे फिर वो गिरी है, इसकी जांच होगी। नेपाल में भी जो भाई बाढ़ आई है वहां मरने वालों की तादाद 1355 हो गई है, आज 13वें दिन का ये आंकड़ा है। नेपाल में बाढ़ में मारे गए लोगों की याद में आज राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट की बैठक में बाढ़ के 13वें दिन राष्ट्रीय शोक मनाने का यह फैसला लिया गया था। शोक की अवधि के दौरान पूरे नेपाल में सरकारी दफ्तरों और विदेशों में जो नेपाल के डिप्लोमेटिक मिशन्स हैं वहां पर उनका नेशनल ध्वज यानी झंडा आधा झुका रहेगा। दुनिया के नए नक्शे में जम्मू कश्मीर की स्थिति पर भारत के ऐतराज पर पाकिस्तान का जवाब आया है। भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से दुनिया के नए नक्शे में जम्मू कश्मीर की जो स्थिति जताई गई है उस पर भारत ने ऐतराज किया और पाकिस्तान ने जवाब दिया है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर भारत के बेबुनियाद दावों को पूरी तरह खारिज करता है। आपको बता दें भारत के इलाके को गलत या भ्रामक तरीके से दिखाना, भारत का कहना है कि हमें मंजूर नहीं है, भारत की सीमाएं अटल हैं और इससे समझौता नहीं हो सकता। जर्मनी में राइट विंग अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी ईस्टर्न स्टेट्स में सैक्सोनी ऑन हॉल्ट में बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। ये पार्टी मुख्य धारा की जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं उनकी प्रतिद्वंदी पार्टियों से काफी आगे है। हालांकि अनुमान है कि इन्हें मेजोरिटी नहीं मिल पाएगी, लेकिन अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी का कहना है कि उसे सरकार बनाने का जनादेश यानी मेजोरिटी मिल चुकी है। अब तक आए ज्यादातर शुरुआती नतीजों में वो कंजर्वेटिव CDU से काफी आगे है। भारत की राजधानी दिल्ली में जो एक बिल्डिंग के गिरने का हादसा हुआ, दिल्ली सरकार अब लाएगी वहां बिल्डिंग रूल, सीएम रेखा गुप्ता ने बताया है। सत्य निकेतन में बिल्डिंग ढहने से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नए कानून लाने की बात कह रही हैं। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि सरकार अधिकारियों के साथ मिलकर एक ड्राफ्ट रूल बनाने की तैयारी कर रही है। आदित्य ठाकरे ने गरबा और डांडिया में मुसलमानों की एंट्री पर रोक को लेकर के एक बयान दिया है। ऐसी चर्चा थी कि वहां वो धार्मिक कार्यक्रम है और उसमें मुस्लिम नौजवानों का आना वहां ऑर्गेनाइजर्स को शंका से भरा दिखाई पड़ता है, शक करते हैं वो। उन्होंने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने वाले ये कौन होते हैं, उन पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, यानी उनका उनके लिए गरबा जो है वो ओपन रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई में चाहे गरबा हो, नवरात्रि हो, दही हांडी हो या गणपति उत्सव, यहाँ आपको दिखने वाले सभी लोगों की पहली पहचान मुंबई कर की है। वो चाहे कोई भी भाषा बोलते हो, किसी भी राज्य से आए हो, उनका धर्म या जाति कुछ भी हो, वे बप्पा के लिए आते हैं, किसी खास व्यक्ति के नहीं, और बप्पा सबके हैं। आदित्य ठाकरे का बयान। इंडोनेशिया से खबर आ रही है वहां ज्वालामुखी के फटने से वहां 8 हवाई अड्डों पर करीब 170,000 मुसाफिर फंसे हुए हैं। इन हवाई अड्डों से फिलहाल फ्लाइट्स को टेम्परेरी तौर पर रोक दिया गया है। कल संडे की सुबह जकार्ता के सोयकार्नो हट्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सबसे पहले बंद किया गया था। अमेरिका से खबर आई है वहां के मायामी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कल संडे को एक कार्गो हवाई जहाज रनवे से बाहर निकल करके हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में कम 5 लोगों की मौत हो गई है और 5 अन्य जख्मी भी हुए हैं। अमेजन एयर का यह कार्गो हवाई जहाज लोकल वक्त के मुताबिक करीब 2 बजे उतरने के बाद रनवे से आगे निकल गया और क्रैश हो गया। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
0: और अब हो जाइए तैयार, आ रहा है गीत का उपहार उन लोगों के लिए जो आज अपना भाई जन्मदिन मना रहे हों, ना भी मना रहे हो तो आज मना लीजिए, क्योंकि गीत आ गया है तो अब मनाना ही पड़ेगा ना। हैप्पी बर्थडे हम कहेंगे और आपको स्वीकार करना होगा। अमित कुमार और साथियों की आवाजें

0: फ्लैट कप माइक्रोवेव
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. London, get ready for an unforgettable night.
1: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
0: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
1: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
0: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
1: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
0: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
2: What food mein dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
3: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
2: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak. Fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
3: Friends, family ya special night out. Isi यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वटवुड. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
0: डिस्कवर द मैजिक ऑफ स्विट्जरलैंड विद मंत्रा हॉलीडेज सीनिक स्विस टूर. फ्रॉम द स्टनिंग स्विस आल्प्स टू इंटरलाकन, लुसर्न, माउंट टिटलस एंड मोर. एंड दिस अक्टूबर हाफ टर्म वीव गॉट आवर लोएस्ट प्राइस ऑफ द ईयर. कॉल 02037736333 और विजिट mantrahollidays.co.uk.
4: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
5: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
6: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
7: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन Leica Gold रेडियो, Leica रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड Leica रेडियो मिडलैंड्स पर.
8: और भाई अब देखिए ये आनंद बख्शी की कलम से निकला हुआ कमाल. आम बोलचाल की भाषा को और कभी कभी तो ऐसी शब्दावली को वो गीतों में पिरोकर पेश करते हैं कि भाई गीत तो अमर हो ही जाता है, लेकिन हर किसी को वो मुहावरा भी समझ में आता है कि ऐसा क्यों कहा गया.
9: तुझे मैं भूल जाऊं
8: भूल जाऊं
9: ना तुझे याद करूं

0: भर
1: जिंदगी भर का है अब साथ करीब आ जाओ। भाई ये गीत हमें ले आया है खबरों के नजदीक और खबरों में अमेरिका के मायामी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कल एक कार्गो हवाई जहाज रनवे से बाहर निकलकर दुर्घटना का शिकार हो गया। 5 लोगों की मौत हुई और 5 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। और यहाँ चांसलर जो अपनी मेजर स्पीच तैयार कर रहे हैं भाई, सबकी निगाहें लगी हैं क्या होगा उनके भाषण में। लेट्स
2: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
3: The top stories this hour. The Chancellor's making his first major speech in the role, saying the government has a determination for growth and a belief in Britain's future. Speaking in Coventry, John Healey's been revealing details of a £150 million fund for firms in the north of England. He started by recalling his participation at the G20 meeting in the US last week and heaping praise on his predecessor.
4: I was proud to have behind me the work begun by Keir Starmer to re-establish Britain as a respected voice among our allies, and the work begun by Rachel Reeves to recover Britain's fiscal discipline. I will build on both as Chancellor.
3: Meanwhile, Jaguar Land Rover's confirmed plans to cut 4,000 jobs over the next 2 years. Britain's largest car maker is looking to save £1.7 billion in costs. The Unite Union says it will leave no stone unturned to support workers. A senior government minister has condemned the behaviour of protesters last night at anti-migration demonstrations in Portsmouth. Hundreds gathered in a standoff with police blocking roads around Eastney Marina. 5 people are dead and 5 others were seriously injured after an Amazon cargo plane overshot the runway while attempting to land in Miami. The company says it's working to understand how it happened. 2 US envoys say they've had encouraging talks in Kyiv. Steve Witkoff and Jared Kushner went there after meeting Vladimir Putin in Moscow on Saturday. With aerial attacks escalating, they travelled between the capitals by train. Mr. Kushner insists they're looking for more than just a stopgap deal.
5: Not just to figure out how do we end the current war, but how do we create the right conditions and arrangements for a long-term durable peace that allows Ukraine to use the amazing bravery, ingenuity, strength that it's used to get through the last years of war.
3: And it's claimed laughter therapy could help people with a common lung condition breathe better. A trial in Turkey suggests it could be as effective as breathing exercises. From Sky News, I'm Faye Rowlands.
2: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group.
6: Not only is Aldi's Almat Bio Washing Powder approved by Good Housekeeping for 2 years running, it's also just £3.89. That's less than half the price compared to Ariel Washing Powder from Tesco at £10. So go on, give Aldi a spin. For full T's and C's, see aldi.co.uk/swap.
2: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: वेरी गुड मॉर्निंग। आज के मौसम के विषय में बता दें भाई, दोपहर बाद के मौसम में सनशाइन तो डेवलपिंग है ही, लेकिन कुछ देर के बाद कहते हैं बादलों के भी घिराने की पूरी आशंका बनी हुई है। और शाम को जो है आसमान फिर साफ होगा और गर्म दिन रहेगा पिछले दिनों के मुकाबले। टुनाइट इट विल बी क्लाउडी एंड वेट विद आउटब्रेक्स ऑफ रेन। तो साहब अधिकतम तापमान यानी मैक्सिमम टेम्परेचर लंदन में 24 डिग्री सेल्सियस और मिडलैंड में 20 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा।
2: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
7: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: और बहन भाइयों, हम आ गए उस मोड़ पर जहां आप चिंतन सुनते हैं। और उसके प्रसारण से पहले एक सूचना आपको हम पहुंचाना चाहते हैं। और सूचना यह है कि विश्व में शांति और सद्भाव की ज्योति जगाने के लिए आर्य समाज लंदन आपको विश्व शांति महायज्ञ में सादर आमंत्रित करते हैं। आइए वैदिक प्रार्थना, आध्यात्मिक चिंतन और एकता के लिए ये विशेष अवसर पर परिवार और मित्रों के साथ जुड़िए। नोट कर लीजिए, रविवार 13 सितंबर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ये यज्ञ होगा। आर्य समाज लंदन 69 आर्गाइल रोड लंदन में। पोस्ट कोड है W13 0LY और बुकिंग के लिए संपर्क नंबर है 02089911732। तो भाई ये सूचना थी और आइए सुनते हैं थॉट फॉर द डे, आज का विचार यानी चिंतन।

आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें वेस्ट लंदन से राजीव शर्मा ने भिजवाया है। और एक बात पर भाई वो विचार करने का आग्रह करते हैं कि सोचिए जरा, जब दो व्यक्ति लड़ते हैं या दो पशु भी लड़ते हैं तो आसपास की खेती को कितना नुकसान होता है, दो देश लड़ते हैं तो तबाही कहां कहां तक प्रभावित करती है, अकाल, भूखमरी, अत्याचार और मृत्यु किसी भी युद्ध का एक नतीजा है। जंग का नतीजा क्या होता है, इसमें हार जीत नहीं होती, दोनों ही हारते हैं लड़ने वाले, और जीतते हैं तो भाई अनुभव से बता रहा हूं कि जीतता है तो जब आप किसी के साथ लड़ाई झगड़े में मुकदमे में पड़ जाएं तो जीत वकीलों की होती है, यकीन मानिए। देश जब जंग शुरू करते हैं तो हथियार बेचने वालों की जीत होती है, नुकसान तो उन दोनों का होता है। अब राजीव कहते हैं कि ये फैसले जो है ना जंग के, ये पॉलिटिशियंस लेते हैं, लेकिन नतीजा कौन भुगतता है, एक आम आदमी। जब कोई भी युद्ध अपनी अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है तो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव सालों तक उस देश पर और उस देश के नागरिकों पर मंडराता रहता है। अब साहब इन्होंने कुछ खोज की है और पता चला कि दुनिया में इस समय कितनी जंगें चल रही हैं, कितने युद्ध हो रहे हैं। जवाब मिलेगा 65, छोटी बड़ी जंगें। ये गूगल भाई साहब ने बताया है, वो कहते हैं उनसे पूछिए कि इन युद्धों में, इन लड़ाइयों में लगभग कितने लोग सालाना अपनी जान गंवा रहे हैं। जवाब मिलेगा 1-2 लाख के बीच। और मजे की बात के जान गंवाने वाले सारे निर्दोष होते हैं, डायरेक्टली उनका कोई इरादा नहीं होता लड़ने का, या यूं कहिए कि उनका कोई हित नहीं होता है लड़ने में। इतिहास गवाह है कि कई नामचीन लोगों ने नॉन वायलेंस के लिए, अहिंसा के लिए बलिदान दिए। सब बात शांति की करते हैं, शांति की प्रगति की बात करते हैं, लेकिन युद्धों की शुरुआत करते हैं यही लोग। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें कि दुनिया से जंगें खत्म हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। थैंक यू वेरी मच राजीव जी। कहते ये प्रार्थना हमारे धर्मशास्त्रों ने, हमारे गुरुओं ने भी सिखाई है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्बत दा पला। जब सबका भला चाहेंगे तो किससे लड़ाई करेंगे आप। और भाई शांति सिर्फ देशों के बीच ही नहीं, जल में, स्थल में, आकाश में, वनस्पतियों में, ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष, ओम शांति पृथ्वी, शांति रापः, शांति रोषधय, शांति वनस्पतय, शांति विश्वदेवा, शांति ब्रह्मा, शांति शांति सर्वम, शांति शांति रेव, शांति।

0: चिंतन।
1: आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें राजीव शर्मा ने भिजवाया था ईलिंग से, ईलिंग वेस्ट लंदन से, और जो गीत हमने आपको सुनवाया मोहम्मद रफी साहब और साथियों की आवाज में, फिल्म देश प्रेमी से लिया गया था। और इसी बीच भाई चिंतन के बहुत सारे प्रशंसा के शब्द जो है चिंतन के लिए आ रहे हैं। वत्सला कह रही है, अच्छा लगा चिंतन, प्लीज आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है तो एक भजन सुनवाइएगा भाई। हाँ, कई लोगों के लिए आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए भाद्रपद चल रहा है और कृष्ण पक्ष की आज एकादशी यानी अजा एकादशी है। ये गुजरात और पंजाब, उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में थोड़ा फर्क है। महाराष्ट्र में भी अभी श्रावण है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अवतार जन्माष्टमी का जो होता है वो रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्षीय अष्टमी को हुआ था, तो उस हिसाब से ये भाद्रपद चल रहा है। पर जो भी समय है, प्रार्थना तो करनी ही चाहिए। आपने जिस गीत की मांग की है मैं कार्यक्रम में आगे चलकर शामिल करूंगा। वत्सला जी, हमारी नीला चौधरी जी कहती है, वेलकम रवि भैया, और चिंतन सुनकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आप ही के लिए होता है ये चिंतन प्रेमी है। कल इतने लोगों से मुलाकात हुई एक कार्यक्रम के दौरान, हर किसी ने चिंतन का जिक्र किया और कहते हम प्रतीक्षा करते हैं चिंतन की। थैंक यू जी। विजय सटन से और पम्मी सिंह स्लाव से, अर्जन जी कहते हैं, हेलो रवि शर्मा, चिंतन वाज वेरी बेस्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच। और भाई चिंतन के प्रेमी है सीजर फर्नांडिस, प्रदीप सोलंकी, रंजन, हरविंदर, जैस्मीन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत से हमारे सैनी साहब, और आपका नाम पढ़ा नहीं जा रहा है भाई, नाम जरूर लिखा करें, अब नहीं तो मुझे ढूंढना पड़ता है। अरे हितेश भाई है, हितेश भाई नीचे नाम लिख दिया करो आप, हमारे रेगुलर लिसनर हैं गुजरात में। जय श्री कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। तो साहब चिंतन से निकलते हैं और जुड़ते हैं अपने मूल रंग किसे, यानी मनोरंजन के मनोरंजक रूप से। आज का चिंतन, आज का विचार समाप्त होता है।
0: चिंतन, चिंतन।
1: एक बार फिर याद दिला दें भाई, जो सूचना हमें मिली है, हमारी एक बहन लिखती है कि ये जो विश्व शांति की आपने बात की, हम भी जुड़ना चाहते हैं उन प्रार्थनाओं में। तो भाई बता दूं आपको कि विश्व में शांति के लिए, युद्धों की बंदी के लिए, सद्भाव के लिए आर्य समाज लंदन आपको विश्व शांति महायज्ञ में आमंत्रित कर रहे हैं, वैदिक प्रार्थनाओं के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, शांति अंतरिक्ष, शांति आप भाई, पानी में, जल में, वायु में, आकाश में शांति स्थापित हो, प्रार्थनाएं होंगी। तो ये हो रही हैं 13 सितंबर रविवार को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक, आर्य समाज लंदन, 69 आर्गाइल रोड, W13 0LY। और बुकिंग के लिए उनका संपर्क नंबर है 02089911732। चिंतन समाप्त होता है।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: State Bank of India UK. क्या रेट चल रहा है आज? एक पाउंड के बदले कितने पैसे दे रहे हैं SBI वाले? SBI UK कहते हैं कि 127.35 इंडियन रुपीस फॉर वन पाउंड वी आर गिविंग। अच्छा रेट है, भिजवाइए। और भिजवाने का तरीका, किसी भी ब्रांच में चले जाइए, यस एनी ब्रांच, SBI की किसी ब्रांच में, या फिर ऑनलाइन, या फिर वो जो उनका योनो मोबाइल ऐप है उसके थ्रू से भी, योनो SBI UK मोबाइल ऐप के थ्रू आप पैसे भिजवा सकते हैं। ध्यान रहे, शर्तें लागू हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
2: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। T's and C's अप्लाई। दिस इज द Leica रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.

0: नजर
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: Get ready UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night.
3: Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
2: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
7: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
8: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
9: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
8: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
9: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
8: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio Network. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
10: Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
11: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
10: Rich, authentic taste every single time.
11: Royal Chai, brewed for business.
10: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
12: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
13: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
14: Travel Hub.
13: At all protected.
12: Leica.
15: और लीजिए साहब, संगीत के क्षेत्र में उतरने जा रहे हैं, गीत सुनवाने जा रहे हैं आपको, लेकिन इस गीत की फरमाइश आई है. Back to back दो गीत आप सुनेंगे. पहला गीत जिनकी फरमाइश पर आया है भाई, उनके नाम है मेरे पास, कहाँ है, यहीं कहीं थे. चलो पहले गीत सुनिए और गीत के बाद.
16: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
17: सुनो एक तराना, नया एक फसाना, के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे,
15: आंगन में मेरे सवेरे सवेरे क्या हुआ, यही पूछा है भारती, हविशा, कांता, निर्मा एंड सारा पटेल ने. अब भाई ये इतने सारे लोग एक साथ, पूरी की पूरी गैंग कहाँ मिल गई भाई फरमाइश करने के लिए। कहते उस शो में जिसमें गा रहे थे, धूम मचा रहे थे, रंग जमा रहे थे भाई हमारे मित्र जर्मनी से गायक कलाकार जो है फाहद। फाहद भाई इतने सुरीले कलाकार हैं, उन्होंने बहुत लोगों को खींचा, थिएटर भरा हुआ था और उनकी आवाज़ का मज़ा ले रहे थे। ऐसे में शर्मा जी भी फंस गए भाई, इतने लोग मिले। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार मिला भाई। इमरान भाई थैंक यू वेरी मच, और वो सभी लोग जिन्होंने ग्रीटिंग्स दिए लाइका के प्रेजेंटर्स के नाम, आपके नाम है ये गीत।

और बंजारे के साथ बंजारन मनीषा शर्मा भी आ जाएं, वो भी गाएं और भाई संगीत में साथ निभा रहे हो जाने माने कलाकार पटेल साहब, नौशाद साहब, क्या कहने हैं?

0: जा,
1: अपने घर जा। जिस घर में जन्मी, खेली, कूदी, बड़ी हुई, पढ़ी लिखी, वो घर अपना घर नहीं है। वो भाई का घर है, पिता का घर है, अपना घर तो वो है जो पति का घर है। भाई बहुत प्यारा गीत, इमोशनल गीत, यशुदास, पामिला चोपड़ा और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत हमने सुनवाया आपको। पलियां कि थे ते चलियां कि थे, इमोशनल गीत। राखी का त्योहार था, राखी पर आई होंगी बहुत सारी बहनें भाई के घर, लेकिन भाई फिर कहते हैं अब जा अपने घर, घर तो वही है तेरा।
2: अपने घर जा।
1: और भाई आपको बता दें कि एक, हाँ, दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। उसके बाद बाली ब्रह्म भट्ट आएंगे और अगले 3 घंटे वो आपके साथ बिताएंगे, मीठी मीठी यादों के साथ, फिल्मी बातों के साथ।
3: This is like a gold. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: और ये गीत आपके नाम, आनंद पटेल जी, आप किसी को भी गायक बना सकते हैं।
5: शर्मा के नजा।

0: fun.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: जाने मन जानाने मन भाई, व्हाट ए सॉन्ग दिस वाज. और शहनाई फिल्म का गीत था ये, रवि का संगीत था और एक्टर कौन थे भाई, मेरे ख्याल विश्वजीत थे उसमें. अब पुरानी फिल्मों के बारे में बहुत अच्छी पुख्ता जानकारी तो बाली भाई के पास होती है, लेकिन विश्वजीत और राजश्री थी, वे शांताराम की बेटी. तो भाई उस जमाने में बोलबाला था इन कलाकारों का, इन एक्टर एक्ट्रेसेस का. अब एक सूचना है हमारे पास आप तक पहुँचाने के लिए.
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा. लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट.
3: लाइका एक्स्ट्रा पर भाई हमारा नया एपिसोड जो है पॉडकास्ट का 32 वो आ गया है, जरूर देखिएगा. इसमें भाई एक कलाकार से मेरी मुलाकात हुई और वो बातचीत हमारी संगीत के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको देगी. भाई मोहम्मद वकील एक गायक कलाकार हैं, सुरीले और संगीत की काफ़ी समझ है, परख है उन्हें. और हमने बहुत सारी बातें की और आपको लगेगा कि भाई वो बातें हर संगीत प्रेमी के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है. इन द स्पेशल एपिसोड आई सेट डाउन मैं बैठा उनके पास कैमरे के सामने और सवाल निकलते गए और जवाब मिलते गए. मोहम्मद वकील टू एक्सप्लोर द स्टोरी बिहाइंड इज म्यूजिकल जर्नी, ज़रूर सुनिएगा. आप ये तो जानते ही हैं कि लाइका एक्स्ट्रा के पॉडकास्ट जो है वो अवेलेबल हैं स्पोटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर हमारे एपिसोड्स जो है वो देखने को मिलेंगे, जरूर देखिएगा.
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर. गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव.
4: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
5: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
6: We're not having that, are we?
7: No. Oi, hear that? It's water and cans.
8: And fix those drips and drops.
9: And take shorter showers, yeah?
10: Because when we work together, it all adds up.
11: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
1: Laika Gold.
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
12: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
12: विजिट travelhubworld.com.
13: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन.
14: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
13: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
15: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर.
16: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा.
15: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
17: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
18: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
19: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
20: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
21: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
0: Dubai is the place.
21: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
22: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
23: भक्ति संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बिग थिएटर हेज में एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक प्रभु श्री राम की लीला हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव 18 सितंबर बिग थिएटर हेज टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें श्री रामलीला.theshowmanstudio.co.uk

ये शहनाइयां दे रही हैं दुहाई, कोई चीज अपनी हुई है पराई, किसी से मिलन है तो किसी से जुदाई। आंसुओं को पढ़ के देखिए, दर्द है, खुशी के आंसू नहीं है।

ये गीत हमें लेकर के चलेगा 12 बजे की खबरों तक। और भाई खबरों में चर्चा है पानी का, कोई खर्चा नहीं है पानी का, पर फिर भी क्या कहें साहब। नेपाल की जो समाचार आ रहे हैं, मृतकों की संख्या बढ़ रही है, पानी के भी कई रूप हैं, पानी जिंदगी है और कहीं कहीं पानी मौत। पानी का रंग पहचानिए, कौन से रंग का है ये पानी, सुख का, दुख का, छाव का, धूप का। जब ये फिरता है ना किसी चीज पर, पानी फिर दिया,

जब ये फिरे उम्मीदों पर तो इसका रंग समझ ना आए, और जब ये मेहरबान हो तो खेती लहलहाए। आंख का पानी मर जाए तो कहते हैं कि शर्म हया सब खत्म हो जाए। पानी रे पानी।

बैक टू बैक संगीत सुनवाते हुए भाई हमने ये गीत आपको परोसे और अब देखते हैं कुछ रिएक्शंस आए हमारे चिंतन के और गीतों के बारे में लोग लिख रहे हैं। ज्योति और गिरीश शाह लिखते हैं भाई गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, अब तो गुड आफ्टरनून हो गया है पर आपका पिछले घंटे में मैसेज आया था। गिरीश ईलिंग से कहते हैं बेटियाँ त्रिशंकु जैसी होती हैं, यानी बीच में झूलती हुई, उधर मायका बोलता है कि तू पराया धन है और ससुराल वाले कहते हैं कि ये तेरे पति का घर है, तू मायके से नहीं लेके आई है। नारी जीवन झूले की तरह, इस पार कभी उस पार कभी। विजय सटन से लिखते हैं कि थैंक यू वेरी मच।

0: अनदर वन क्या एक गीत अच्छा लगा आपको, थैंक यू, और भी आएंगे। सलाव से रानी का संदेश है, उल्लास टोरंटो में हमें भाई वहाँ से मैसेज भेजते हैं, और सत्यनारायण सैनी भारत में सुनते हैं, जुड़े रहते हैं हमारे साथ। मृदु वीरेंद्र चौधरी जी, आपको क्या पसंद आया भाई, आपका अप्रिसिएशन तो मिल गया, पर किस बात के लिए तालियां वालियां भेजी हैं आपने, थैंक यू वेरी मच। और बुशी से जगदीश, अर्जुन और भाई महेंद्र बजारिया है रोसेन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी भारत से हैं, कौन है आप हैं, समझ गए आप वही, थैंक यू वेरी मच। और उपाध्याय जी, संजय उपाध्याय, सो नाइस ऑफ यू भाई, जब हम कभी बाहर जाते हैं ना, तो वैसे तो बहुत कम जाना होता है, हम तो घर से स्टूडियो तक के सफ़र में जो है काफ़ी थक जाते हैं, क्योंकि करीब 2 घंटे का सफ़र होता है। लेकिन जब कभी बाहर किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो इतने प्यारे प्यारे और न्यारे न्यारे लोग मिलते हैं, उन्हीं में से हमारे संजय जी भी एक हैं। और इसी बीच भाई, इंटरनेशनल हिंदी सोसाइटी और कथा यूके की ओर से इंटरनेशनल सिद्ध आश्रम में एक हिंदी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है भारत में, और भारतवंशी जहां भी होते हैं वहां उसे मनाते हैं। तो हिंदी के कवियों से, हिंदी के लेखकों से मुलाकात हुई, और एक साहित्यिक गोष्ठी कहिएगा, एक शाम जो है हिंदी के नाम से तेजेंद्र शर्मा ने आयोजित की, और भाई हमारे कपूर साहब, अशोक कपूर जी, और हमारे देवेंद्र अरोड़ा जी, तो इनकी संस्था है इंटरनेशनल हिंदी सोसाइटी, उसके भी भाई तरफ, उसकी तरफ से भी बहुत सुंदर कविताओं का श्रवण और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था। और राज राजेश्वर गुरु जी, जो इंटरनेशनल सिद्ध आश्रम शक्ति सेंटर से हैं, उनकी ओर से जो सुविधाएँ दी गई, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कर दें माता। और अब फिर से पैसों की बात करें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And let me tell you the competitive rate. 1 pound के बदले State Bank of India UK दे रहे हैं 127.35 rupees. 127 रुपए और 35 पैसे का रेट चल रहा है. You can transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai.
3: Like a gold.
2: Like a gold.
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96, एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
7: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
8: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
7: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
8: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 0192322774, बुक योर टेबल टुडे।
9: The wait is finally over.
10: अब सही सुर लगा रहे मुमताज.
9: Mirzapur is coming to the big screen.
11: गद्दी ना तो विरासत से मिलती ना सियासत से.
9: Power, revenge और Mirzapur की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल.
12: अबे कालीन भैया है वो किंग ऑफ Mirzapur.
9: पंकज त्रिपाठी एज कालीन भैया, अली फजल एज गुड्डू पंडित और Mirzapur के आइकॉनिक कैरेक्टर्स अब सिनेमा में और भी बिगर. Mirzapur द मूवी इन सिनेमाज नाउ.
11: Mirzapur में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
13: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल, कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ.
14: अपना बनाया तेनू.
13: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफर्ड टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फर्ड टाउन हॉल में. टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20. VIP एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल. बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216. टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट, 407 हाई रोड, इल्फर्ड.
15: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192-388-3100. Atoll protected.
16: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
17: Have you noticed the way fans shout at football matches?
18: Oh, wake up!
17: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
19: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
20: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
19: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
20: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
21: है प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा.
20: Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
22: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
23: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
24: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: And let me tell you, the Artist of the Week this week is सप्ताह के कलाकार हैं. सुरीले गायक कलाकार भाई, खासकर अगर कोई शास्त्रीय संगीत पर आधारित कोई गीत किसी के होठों पर सजाना हो तो फिर मन्ना डे जी को बुलाना हो. मन्ना डे.
25: ओ मेरी मैना, तू मान ले मेरा कहना, अरे मुश्किल हो.

क्लासिकल धुनों पर तो भाई इनकी आवाज सजती ही रही है मन्ना डे साहब की, लेकिन महमूद के लिए कॉमेडी सॉन्ग भी अगर उन्होंने गाए तो भाई महमूद के होठों पर वो गीत जमकर बहुत छाए।

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: आज वही जो लोग जन्मदिन मना रहे हैं उन्हें भी बधाई देते चलें। यहाँ ब्रिटिश राजनीति में एक नाम है आलोक शर्मा का। भाई रेडिंग से ये पूर्व मंत्री भी हैं और टोरी पार्टी के एक बड़े सम्मानित सदस्य हैं। आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स। 1967 में जन्मे थे ये। इनके अलावा साहब जन्मदिन मनाने वालों में एक नाम शामिल है भारत के एक राजनीति के पॉलिटिशियन का, और वो हैं राजस्थान से। राजस्थान से उनका डेप्यूटी सीएम रहे हैं या अब भी हैं मालूम नहीं, लेकिन बहुत चर्चित नाम रहे हैं। लेकिन एक और नाम याद आ रहा है, नीरजा भनोट। भूले तो नहीं होंगे आप उस लड़की के बलिदान को। भाई वो एयर होस्टेस थी और अमेरिकन एयरलाइन के एक हवाई जहाज को जब अगवा किया गया और उसे कराची ले जाया गया, तो पाकिस्तान में आतंकवादियों के साथ जूझते हुए उनसे यात्रियों को बचाते हुए और उस लड़की ने अपनी जान दी थी। उन्हें भारत ने भी भाई उन्हें सम्मानित किया, अमेरिका ने भी और पाकिस्तान ने भी। उसका बलिदान जो है तीनों देशों ने स्वीकार किया। और साहब जन्मदिन कौन मना रहे हैं? सचिन पायलट। हाँ, वो राजस्थान के जिनका मैं जिक्र कर रहा था, सचिन पायलट हैं वो जिनका आज जन्मदिन है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स। और भाई आपके घर में परिवार में अगर किसी का जन्मदिन है तो हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएँ। स्टूडियो में जैसा मैंने बताया कि बहुत ठंड होती है हमारे यहाँ, दिल करता है कि रजाई लेके आया करें। स्टूडियो पूछता है खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर प्रोग्राम से पहले स्टूडियो खुद तुमसे पूछे कि बता तेरी रजाई कहाँ है।

0: Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और भाई एक दो सूचनाएं हमारे पास हैं आप तक पहुंचाने के लिए, और उनमें एक तो ये है कि कई प्रोग्राम लाइंड अप हैं और आप कहीं जाना चाहेंगे, तो एक तो भाई बिग बॉस इज बैक, द 20th सीजन ऑफ बिग बॉस इज बैक, होस्टेड बाय सलमान खान. द शो एयर्स एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर टीवी एंड जियो हॉटस्टार फ्रॉम दिस संडे द 6th of September, यानी जो कल गुजर गया, कल से शुरू हो चुका है ये कार्यक्रम, तो साहब देखना मत भूलिएगा. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जियो हॉटस्टार विल स्ट्रीम एवरी एपिसोड अलॉन्ग विद अ लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20 हाउस. तो साहब ये सूचना आप तक पहुँचानी थी. एक और कार्यक्रम की याद दिलानी है, याद दिलाना चाहता हूँ, और वो कार्यक्रम कहाँ है, कब है भाई? उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब तशरीफ ला रहे हैं, और यकीन नहीं आता ये तशरीफ ला रहे हैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की 30वीं बरसी के अवसर पर. सिर्फ एक दिन के लिए एक शो लेकर आ रहे हैं संडे 18th April 2027 को, अगले साल, एट O2 लंदन. रेडियो पार्टनर इज लाइक अ रेडियो ऑफ कोर्स. और मैं जिस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को गए हुए 30 बरस हो गए, ऐसा लगता है जैसे कल की बात है, क्योंकि बारबीकन में उन्हें सोने के मुकुट से भाई सम्मानित किया गया था, उस प्रोग्राम में भी मैं मौजूद था. उनका एक प्रोग्राम मैंने कॉम्पेयर भी किया था वेम्बली में, और उसे देखने के लिए नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला और कई जो है फिल्मी हस्तियां मौजूद थी ऑडियंस में, मैं स्टेज पर था उनके साथ. और वो दिन, और उसके बाद एक फिल्म में भी हमने बैठ करके एक शो देखा, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की साथ घूमते फिरते. उस वक्त ये एहसास नहीं हो रहा था कि नहीं तो तस्वीरें बना लेते भाई, ऐसी महान हस्ती म्यूज़िक के तो ऐसे पारंगत, क्यों कहिए कि भाई वो उनकी आवाज़ कुछ ऐसी थी ना जैसे वो क्या है कि अमेरिकन सिंगर हैं उन जैसी आवाज़ में वो गाते थे. क्या नाम उनका दिमाग से उतर रहा है, आपको याद है ना? तो सोच लीजिए, पर उसे मान लीजिएगा.
0: ये है लाइका गोल्ड.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
2: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर रहे उस दौर की, और हर दौर की हम कहेंगे एक ऐसी गायक कलाकार जोड़ी जिसने कितने ही अमर और मधुर गीत फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से हम संगीत प्रेमियों को दिए. सुन सुन के हम एंजॉय करते हैं, एंजॉय कीजिए. ज्वेल थीफ फिल्म का गीत है, 1967 की फिल्म, उन दिनों बड़ी बड़ी बैनर्स वाली फिल्में जो है भाई वो फ्लॉप हो रही थी, लेकिन ये फिल्म देवानंद और वैजयंतीमाला की फिल्म हिट थी, और हिट था संगीत भी.

0: कौन किसी को रोक सका है। सैयद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजरा पंछी एक दिन सबके सामने उड़ जाना है।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Let me tell you the rates. भाई LemFi वाले एक पाउंड के बदले इस समय दे रहे हैं इंडियन करेंसी में 128 रुपीज एग्जैक्टली, और पाकिस्तानी 375.7, बांग्लादेशी टका 166.43, श्रीलंकन रुपए 444.19, अफगानी 88.32 एंड श्रीलंकन तो बता दी ना, केनियन शिलिंग्स 175.18.
4: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Leica Gold.
3: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, the gold is sold at the rate of 104.26 pounds per gram.
3: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.

0: ये है Like a Gold 10:35 AM.
1: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
2: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड।
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 0208574 8410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
6: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
5: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
6: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
7: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
6: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
8: नमस्कार, मार्च 2027 માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન। આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટ સીન, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો। માત્ર 4,499 pounds પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ્સ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન્સ બધાનો સમાવેશ છે। સીટ્સ લિમિટેડ છે, એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો। મહારાજા ટૂર્સ, તમારો વિશ્વસનીય ટ્રાવેલ પાર્ટનર। જાપાન તમારી રાહ જોઈ રહ્યું છે।
9: Bhajan clubbing hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of bhajan jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at SKLPC.com/BSS. Exclusive radio partners, Leica Radio Network.

ओ मैन क्या गाने मज़ा आ जाता है। कभी कभी कुछ गाने बड़े अरसे से नहीं सुने होते हैं तो दिल खुश हो जाता है। मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स एंड थैंक यू फॉर योर वंडरफुल मैसेजेस हैना। एंड वी गॉट हमारे दिनेश पोपट जी एंड मनु भाई एंड योगेश हंसावोरा। वी गॉट मिकी पाजी एंड मिसिस चियांग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑलवेज नाइस टू सी यू ऑन मंडे मॉर्निंग्स एंड यू गेट rid of my Monday blues and Nazia Shakil and Arjun ji and Aruna and Bhupendra Patel and we got Vijay Godori. Yes, I wonder what's going on with his golfing today. And Pammy Singh ji, thank you very much as always, first in with your messages. Thank you very much all of you. These are the early birds who come in and then the others join in after lunch. Anyway, आप सुनते रहिएगा, मैं आगे जो गाने सुनाने वाला हूँ that's a songs of Bappi Soni. Bappi Soni was born on 31st of July 1928 and he passed away on 5th of September 2001 in Nanavati Hospital at the age of 73. इन्होंने सिर्फ 19 फिल्में की थी लेकिन धमाका मचा दिया। अब गाने सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये दो गाने जो थे वो उनकी फिल्मों के नहीं थे, बस ही वॉज बेस्ट नोन फॉर शम्मी कपूर एंड धर्मेंद्र हिट फिल्म्स एंड ही वन एन अवार्ड फॉर ब्रह्मचारी। ही वॉज अ प्रोड्यूसर, ही वॉज अ डायरेक्टर एंड ही वॉज अ राइटर। जिन्होंने 15 फिल्में की थी उसमें से काफ़ी प्रोड्यूस भी की थी इन्होंने

And whenever I play this song, it's always dedicated to Farida Ghulam Ali, and she is crazy about this song. Not only this song, many of the Sri Ramchandra songs. Now, why am I playing these particular songs? Because we are remembering a great personality in the film industry, that is Pyare Lal Srivastav. Pyare Lal Srivastav? तो फिर पीएल संतोषी कौन है? इन्होंने अपना नाम एक्चुअली जब बॉम्बे आए थे तभी प्यारे लाल संतोषी ने अपना नाम नेचुरली पीएल संतोषी कर दिया था, बट ही वॉज बोर्न विद अ डिफरेंट नेम ऑल टुगेदर एंड

आपने ये दो जो गाने अभी सुने, यू नो हम पंछी एक डाल के, और ये गाना जो आपने सुना आना मेरी जान संडे के संडे, ये पीएल संतोषी ने लिखे थे। हम हमेशा ये सोचते हैं कि एन दत्ता ने वो म्यूज़िक दिया था हम पंछी एक डाल के, और सी रामचंद्र ने म्यूज़िक दिया था और गाया भी था उस गाने के अंदर आना मेरी जान संडे, लेकिन गाने लिखे थे पी एल संतोषी ने। यस, ही वॉज नॉट ओनली अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अ स्टोरी राइटर, दैट मीन्स ही वॉज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, एंड जिसको हम कहते हैं हरफन मौला। हरफन मौला कौन थे हमारी इंडस्ट्री के अंदर? इट वॉज टू स्टार्ट विद यू कैन से केदार शर्मा, यू कैन से प्रेम धवन, फिर थे राज कपूर जी, विजय आनंद, मल्टी टैलेंटेड दीज गाइज। दे वुड सिंग, दे वुड एक्ट, दे वुड डायरेक्ट, दे वुड प्रोड्यूस, दे वुड एडिट, दे वुड डू स्क्रीन प्लेज, स्क्रीन राइटिंग। एंड सबसे बड़े हरफन मौला हमारी इंडस्ट्री के किशोर कुमार, जिन्होंने म्यूजिक भी, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, गाने भी लिखे, गाने गाए भी, प्रोड्यूस भी की फिल्में और डायरेक्ट भी की फिल्में, इनको कहते हैं हम हरफन मौला, एंड सो इज पी एल संतोषी। डोंट फॉरगेट, ही वोर मल्टीपल हैट्स, एंड कभी डायरेक्टर की हैट पहन के फिल्म डायरेक्ट की, फिर उसके बाद लिरिसिस्ट की हैट पहन के इन्होंने लिरिक्स लिखी फिल्म की, कभी स्टोरी राइटर की हैट पहन के फिल्म की स्टोरी लिख ली। अब मैं आगे क्या बताऊँ आपको, इट कुड बी डिवोशनल गाने हो या फिल्म हो या ट्रिवियल या ह्यूमरस हो या रोमांटिक हो, फिलोसॉफिकल हो, पैथोस के साथ भरी हुई फिल्में हो। ही यूज्ड मीनिंगलेस वर्ड्स इन हिज लिरिक्स समटाइम्स, यू नो, जैसे कि ही हा एंड तरारा, ऐसी ऐसी लिरिक्स वो लिखते थे। लेकिन उस जमाने में टीनेजर्स के लिए एक क्रेज बन गया, जैसे आना मेरी जान संडे के संडे, वो गाना क्रेज हो गया बिकॉज ही रोट द लिरिक्स एंड दे वर सो कैची। अब इनके बारे में आगे मैं बात कहूँ तो बचपन में ही वॉज बॉर्न इन जबलपुर। जबलपुर में पता कौन से एक नाम तो मेरे जहन में आता है, एंड दैट इज आदेश श्रीवास्तव, हु वॉज ऑल्सो बॉर्न इन जबलपुर। नाउ पी एल संतोष बॉर्न प्यारे लाल श्रीवास्तव, हाईली वर्सेटाइल फिगर, इतना मैंने अभी तक आपको बताया। अभी इनकी करियर के बारे में हम बताते हैं। ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स, बचपन से ही यूज टू गो इन कवि सम्मेलन एंड ऑल दैट। एक बार एक गाँव में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उसमें उनको एक चांस मिला था। बाय द वे इनके पिताजी हेडमास्टर थे उस स्कूल के, एंड इनको चांस मिला असिस्टेंट डायलॉग राइटर ऑफ दैट पर्टिकुलर फिल्म दैट केम टू जबलपुर फॉर शूटिंग। इनमें से इनको कीड़ा घुस गया कि मेरे को बॉम्बे जाके फिल्में करनी है। सो ही वेंट टू बॉम्बे इन द मिड 1930s एंड स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट टू जद्दन बाई। जद्दन बाई कौन? मदर ऑफ एक्ट्रेस नरगिस ऑफ कोर्स, एंड ही क्विकली रोज टू प्रोमिनेंस एज अ मल्टी टैलेंटेड फिल्म मेकर हु रोट स्टोरीज, स्क्रीन प्लेज, लिरिक्स वाइल डायरेक्टिंग हिज ओन मूवीज। एंड ही डायरेक्टेड हम एक हैं 1946 में। हम एक हैं जब फिल्म इन्होंने डायरेक्ट की तो 1946 में, विच मार्क द ऑन स्क्रीन डेब्यू ऑफ लेजेंडरी एक्टर देवानंद। देवानंद की सबसे पहली डेब्यू फिल्म हम एक हैं 1946 की। यस, ही ऑल्सो रोट एंड डायरेक्टेड फिल्म शहनाई 1947 की, विच रिलीज्ड ऑन 15th of August, द डे इंडिया गेन्ड फ्रीडम ऑफ कोर्स। अब आगे मैं बताऊं तो नोटेबल फिल्मोग्राफी इनकी देखो। संतोषी डायरेक्टेड, रोट एंड कंट्रीब्यूटेड टू डजन्स ऑफ इन्फ्लुएंशियल हिंदी फिल्म्स। हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्टोरियल वेंचर्स आई वुड से, हम जैसे कि मैंने कहा हम एक हैं डायरेक्टर 1946 के, शहनाई 1946, खिड़की 1948 की,

0: फिल्म है सरगम 1950 की. वी आर रिमेम्बरिंग पीएल संतोषी. और इस गाने में तीन राग है, आसावरी, इट्स देवगंधार एंड जौनपुरी. व्हाट लवली म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय पीएल संतोषी. मैंने कहा था ना, दम है बात में, मजा आया ना. सी रामचंद्र का संगीत है और पीएल संतोष की लिरिक्स.
1: ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स. जस्ट एड हॉट वाटर एंड एंजॉय कोका नूडल्स इन 3 मिनट्स.
0: I hope you're enjoying the tribute and the films that P.L. Santoshi are in ke saath jo filmein judi hui hain, jaise ke Shehnai and then Sargam and Hum Panchi Ek Dal Ke, Barsaat Ki Raat, Opera House, Dil Hi To Hai. To main koshish karunga ke ek do gaane squeeze in kar dun aapke liye. Suniyega.
2: On this week's Leica Extra podcast, Ravi Sharma talks to singer Mohammed Vakil, winner of Sa Re Ga Ma Pa.
3: अगर हम सामने वाले की इज्जत करेंगे अपने बड़े की, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, जमाना हमारी इज्जत करे. और जिसने अपने गुरु की और माँ बाप की दुआ दे दी उसको आगे जाने से रोक. बड़े पंडितों उस्तादों का कहना है कि संगीत अपने आप में एक ऐसा काम है जो आपके दिल और दिमाग को सुकून पहुँचाता है.
2: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3537, Indian rupees 127.99, Afghan Afghanis 88.56, Pakistani rupees 375.74, Kenyan shillings 175.23, and Mauritian rupees 63.47.
4: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Leica Gold.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £104.59 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold. Across London, this is Bali Brambat on Leica Gold. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
5: Oh, your school has just emailed your flu vaccine form. I'll do it now.
6: Do I have to have that?
5: Yes, it's a quick and painless spray up your nose that helps stop you getting really poorly with flu or passing it on to Nanny and Grandad.
6: Okay then.
7: If you have a child in reception to year 11, help protect them with a flu nasal spray vaccine. Your child's consent form could arrive by email, text, through your school app or in their bag. Look out for it and complete it. Find out more at nhs.uk/child-flu. Stay strong. Get vaccinated.
8: Gold Afternoons with Bali Brambat. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. Bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
9: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
10: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
11: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
10: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
11: A spectacular musical experience is coming to Ovo Arena Wembley on the 27th of September.
12: हे प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा.
11: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
13: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
14: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
13: डेजर्ट सफारी,
14: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
13: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
14: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
15: साफो ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।

0: भिन रुपया तो मिस्टर
1: पी एल संतोषी डायरेक्टेड दिस फिल्म. इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय अलहद चित्रा. But what a beauty. पर आगे जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, that is to end this hour in a beautiful way. Yes, I mean a beautiful way. Because इन्होंने जितना रंग दिखाया अपनी लिरिक्स से, वैसे ही एक फिल्म की स्टोरी कही, कहानी लिखी और उसके अंदर संगीत भी बड़ा हिट रहा. सुनेंगे तो सुनिए.

फिल्म है बरसात की रात। पीएल संतोषी ने डायरेक्ट की, स्क्रीन प्ले भी इन्होंने लिखा टुगेदर विद भरत भूषण एंड सरशार शैलानी हु डिड द डायलॉग्स ऑफ द फिल्म। इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय आर चंद्रा और रफ़ी अजमेरी ने स्टोरी लिखी थी, लेकिन ये डायरेक्शन वॉज सुपर्ब। रोशन का संगीत था, सोनिक का बैकग्राउंड म्यूजिक था और गाने तो वो सुनिएगा पूरी कवाली आज।

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड।
1: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
2: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
1: ये तो बताओ, कोई पता चला?
3: गुरु गुरु,
4: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
3: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
4: सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
1: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र।
4: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
5: टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Laika रेडियो नेटवर्क। Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
6: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
7: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
8: Minar Jewelers. Agar aap sona bechna chahte hain ya valuation karwana chahte hain, to uski sahi qeemat ke liye tashreef le jaiye Minar Jewelers par. 181 Upper Shooting Road या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
9: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
10: Okay.
9: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
0: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
10: The legend Kavita Krishnamurti performs live at the Royal Albert Hall on Sunday, 1st of November. Brought to you by Sanatan Events as a Diwali special. Tickets from the venue box office. Exclusive radio partner Laika Radio Network. Hariharan and Kavita Krishnamurti singing song from film Boxer 1983.

0: सवेरे वाली गाड़ी 1986 सुरेश वाडकर और आशा भोसले, लेकिन मैं तो अभी शाम वाली गाड़ी में चला जाऊंगा बिफोर इट स्टार्ट्स पेल्टिंग डाउन विद रेन एंड इट्स गोना बी सैंडी शाह हु इज गोना जॉइन यू एंड राज पतन ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स. बाली का नमस्कार.
1: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham wide on full-scale DAB digital radio.
0: एक नजर पत्ता पत्ता बूटा बूटा
2: पत्ता पत्ता बूटा बूटा
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी की लिरिक्स. रफी साहब

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: गणपति बाप्पा के आगमन से घर आएंगी खुशियाँ और सुख समृद्धि से सुनहरा बनेगा आने वाला हर पल.
2: Let's celebrate this auspicious occasion with delicious ethnic namkeen varieties of Jaimin snacks along with its khakra, mango pulp, सोन पापड़ी एंड पिकल्स.
1: अवेलेबल एट एथनिक ग्रोसरी स्टोर नियर यू. गणपति बाप्पा मोरिया.
3: मीनार ज्वेलर्स. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 02087677627.
4: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
5: This is Sandy Shah on Gold Drive.
6: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
1: London, get ready for an unforgettable night.
2: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
1: comes to the O2 Arena, London on 18th April 2027.
2: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
1: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
2: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
1: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
3: The wait is finally over.
4: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
3: Mirzapur is coming to the big screen.
5: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
3: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
6: Abhe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
3: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, in cinemas now.
5: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
1: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
7: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
9: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ
10: अपना बनाया तेनू
9: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफर्ड टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फर्ड टाउन हॉल में टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20 वीआईपी एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216 टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट 407 हाई रोड इल्फर्ड
11: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
12: 24 days, South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
13: Like a goal. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Goal. Aur online suno likeagold.com pe.
14: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: गोल्ड। आप सुन रहे हैं गोल्ड ड्राइव विद सैंडी शाह। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
3: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24-hour line.
4: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
5: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
4: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
5: A spectacular musical experience is coming to Ovo Arena Wembley on the 27th of September.
6: हे प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
5: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा। फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन। फ्लाइट्स, 4-star होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।
8: रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
9: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
9: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस।
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
10: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
11: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
12: Big Boss mein is baar milega bardaan aur extra jeevan daan. Tab has tu mein jaan.
13: Big Boss Season 20, every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house, exclusively on Jio Hotstar.
14: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Ravi Sharma talks to singer Mohammed Vakil, winner of Sa Re Ga Ma Pa.
15: अगर हम सामने वाले की इज्जत करेंगे अपने बड़े की, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, जमाना हमारी इज्जत करे। और जिसने अपने गुरु की और माँ बाप की दुआ दे दी उसको आगे जाने से को रोक। बड़े पंडितों उस्तादों का कहना है कि संगीत अपने आप में एक ऐसा काम है जो आपके दिल और दिमाग को सुकून पहुँचाता है।
14: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. This is Sandy Shah on Gold Drive. The sun is out, and so are the summer hits on Leica Gold.

0: traffic and travel.
1: Join us at the Mercedes-Benz Vans Advantage event from the 14th to the 23rd of September. Order your new or approved used Mercedes-Benz van and unlock unmissable event-exclusive offers. And that's on top of existing offers across the range. Your Mercedes-Benz van is waiting for you. Take advantage and drive your business forward. Search Mercedes-Benz Advantage online and book your appointment at your local dealer. Mercedes-Benz Vans. We've got your back. Offers end 23rd of September. Selected models subject to availability at participating dealers. T's and C's apply.
2: ये है Like a Gold. Like a Gold.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
4: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
3: Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
5: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
3: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
3: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner Leica Radio Network.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
7: बोले तूने क्या कर रहा है रे
8: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ
7: ये तो बताओ कोई पता चला
8: गुरु गुरु
9: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
8: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है
9: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर
7: साधू तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए सुबह से शीघ्र
10: शीघ्र शीघ्र
9: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर
11: टू बुक कॉल 0208 514 5400 Book online at Eventbrite.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: Watford में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
13: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
12: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
13: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वॉटफोर्ड कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे
14: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100 Atoll Protected.
4: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlus and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
15: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Like a Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. Delays on the M4 onto the elevated section eastbound as you head from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. A312 the partway busy southbound before the M4 Junction 3. A40 Western Avenue slowing westbound before Gypsy Corner, and the A312 Church Road and Mandelville Road heavy from the White Hart roundabout to the Target roundabout and then on to Northolt Station. Queuing on the A406 North Circular Road southbound at the Hanger Lane gyratory to the Tube, and severe delays on the District Line between Tower Hill and Earls Court. That's due to an earlier security alert, and minor delays on the Victoria line. That's down to cancellations. That's your latest traffic and travel.
2: Like a Gold. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colours TV and Geo Hotstar.
3: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
4: Namaskar. March 2027 માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન. આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટ સીઈંગ, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો. માત્ર £4,499 પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ્સ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન્સ બધાનો સમાવેશ છે. સીટ્સ લિમિટેડ છે, એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો. મહારાજા ટૂર્સ, તમારો વિશ્વસનીય ટ્રાવેલ પાર્ટનર. જાપાન તમારી રાહ જોઈ રહ્યું છે.
5: भक्ति, संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज. द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला, अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो, 18 सितंबर को बिग थिएटर हेज में. एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज, दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक. प्रभु श्री राम की लीला, हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव. 18 सितंबर, बिग थिएटर हेज. टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें shriramleela.theshowmanstudio.co.uk.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410. दैट्स 85748410.
7: साउथ हॉल ट्रेवल. Auto protected.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.

कब हमने ये चाहा था ताउम्र ठहर जाए, कब हमने ये चाहा था ताउम्र ठहर जाए, कुछ ख्वाब थे पलकों की दहलीज पे धर जाते, कब हमने ये चाहा था ताउम्र ठहर जाते, कुछ ख्वाब थे पलकों की दहलीज पे धर जाते। यख बस्ता हवाएं तो कहती थी पलट जाओ, तुम खुद ही जरा सोचो, घर होता तो घर जाते, एक बार मोहब्बत से आवाज तो दी होती, एक बार मोहब्बत से आवाज तो दी होती, 100 बार मोहब्बत में हम जहां से गुजर जाते, मिलना नहीं मुमकिन था तो रास्ता ही बदल लेते, दिल में ना उतरना था दिल से ही उतर जाते। आई होप के वीकेंड पर मैं आपके दिल से नहीं उतरे होंगे, कैसे हैं आप? आई होप यू हैड अ वंडरफुल वंडरफुल वीकेंड, आई डेफिनेटली डिड, और इट्स गुड टू बी बैक ऑन मंडे आपके साथ पूरे 10 बजे तक साथ निभाएंगे, बहुत प्यारे प्यारे गीत सुनवाएंगे, रोजमर्रा वाले फीचर चलाएंगे, यानी कि थीम आवर अभी हो रहा है, चल रहा है, बहुत सारे लोग कोशिशें कर रहे हैं, कुछ कामयाब और कुछ नाकाम ऑलरेडी हो चुके हैं।

0: लड़की
1: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: 1981 ki hit movie Love Story se humne sunwaya aapko ye ki to zamane mein love stories bhi kitni masoom hua karti thi. Aajkal to pata nahi love ko ho kya gaya. Love waise kahin duniya mein reh gaya hai. कहते नहीं उसका वजूद उठ चुका है. नहीं भाई नहीं, हम तो इस बात को नहीं मानते. हम तो सोचते हैं, मानते हैं, यकीन रखते हैं कि प्यार है, मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है. मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है. हाँ, कुछ लोगों ने मजाक बना रखा है इसको, लेकिन नॉट एवरीवन. लीजिए अब गुल जी को ही लीजिए. जब मैंने कहा कि भाई दो दिन में कहीं मुझे भूल तो नहीं गए, तो कहती हैं 4 महीने 14 दिन में नहीं भूले लड़की, तो 2 दिन में कैसे भूलेंगे. सबसे ज्यादा तो अच्छा लगा लड़की.
4: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
3: और अब मैं सोचूं कि मैं क्या करूं और मैं क्या ना करूं. यार आप लोग इतना कंफ्यूज कर देते हो. अब मिले जुले जवाब भिजवा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि मानूं या ना मानूं. शगुफ्ता जी, यू आर द रानी ऑफ द आवर. आपने बिल्कुल सही जवाब जो मुझे चाहिए था सबसे पहले और बहुत जल्दी भिजवाया आपने भी. मोहम्मद अयूब चौहान जी, आपका जवाब भी बिल्कुल सही. रुखसाना अफजल जी, संध्या भावसर जी, लुबना जी लाहौर से, निमी जी, विजय गुडोरी जी, अमिता जी, रीटा जी, मनजीत संगर जी और तो जी जी, आपके जवाब बिल्कुल सही हैं. वजह जी, ए वेरी बिग हेलो टू यू. हमेशा बहुत शॉर्ट लेकिन स्वीट सा मैसेज भिजवाते हैं. थैंक यू, सुनते रहिएगा. अब गलत जवाब तो मैं मानूंगी मनु जी का. आप क्योंकि मनु जी आपने मतलब आधा जवाब दिया है. अंजुम जी आपका भी जवाब नहीं मान सकती. प्रीति जी आपका भी नहीं. ताहिर जी आपका भी नहीं. अरुणा जी आपका मतलब चलें ठीक है.
5: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
1: फील गुड क्लासिक्स विद अनीसा नासिर.
6: दीवाना

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: फील गुड हिट्स इन द सन विद लाइका गोल्ड.

0: ना ही उड़ के, ना ही चल के, ना ही गाड़ी में, ना ही पैदल, कहीं जाने वाले नहीं हम 10 बजे से पहले। और क्या बात है, तारिक राहिल जी कहते हैं हम अपने नाम से हरगिज कहीं जाने नहीं जाते, हम अपने नाम से हरगिज कहीं जाने नहीं जाते, तुम्हारा नाम ना लेते तो पहचाने नहीं जाते। क्या बात है। दिनेश पोपट जी, उल्लास जी टोरंटो से, सलमा जी, गीता हर्षद जोशी जी, निलेश जी, गुरसरन जी, जी रजनीश जी, और एज आई सेड तारिक राहिल जी आपके जवाब बिल्कुल सही, शकीला जी और किरित जी आपका जवाब सही नहीं है, और निमी जी मैं जानती हूँ आपका दिल दीवाना है लेकिन अभी रिसेंटली तो सुनवाया।
1: ये है Laika Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta hai 375.7 Pakistani rupees, 128.03 Indian rupees, 88.2 Afghani, 166.2 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
1: Laika Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LAIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £104.80 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: अभी तशरीफ आवरी हुई है जनाब उमर साहब की, ऑल द वे फ्रॉम दुबई। आपका जवाब बिल्कुल सही है, गीतों में यही कॉमन है। और अगर बिग बॉस की बात करें तो कुछ नाम मुझे याद हैं, कनिका मान, आसिफ खान, काजी तौकीर, स्काउट, उनका असल नाम मुझे नहीं याद, अमरपाली दुबे और ईशारी की जानते हैं ना, बादशाह जी की सेकेंड जो शादी हुई उन्हीं से हुई और वो भी चंद दिन ही चली। एनीवेज वो जाने, उनकी शादी जाने और बादशाह जाने, लेकिन फिलहाल वो एंटर हो चुकी हैं बिग बॉस 20 में। माही विज, रोहित खान, ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रिया, रिति लेजेंड, बॉक्सिंग लेजेंड, मैरी कॉम, अमन गांधी, उदिति सिंह, कहीं से आपको वो करीना कपूर लगती हैं? मुझे तो हैरत हुई सुन के कि लोग कहते हैं कि वो करीना कपूर जैसी लगती हैं। बहुत प्यारी हैं लेकिन करीना कपूर जैसी नहीं लगती। करीना कपूर अपनी जगह, उदिति सिंह अपनी जगह, और एक आई थिंक लव सिंह भी हैं, पंजाबी कुड़ी, क्यूट सी हैं, सभी क्यूट हैं। और देखते हैं आगे आगे कौन क्यूट और कौन नॉन क्यूट होता है।
1: Biggest Indian and Pakistani classics with Anisa Nasir.
3: मुबारक हो सबको समाये सुहाना।

0: दीवाना के साथ साथ दीवानी भी कॉमन रहा। आज के गीतों में दो घड़ी के साथी को हम सफ़र समझते हैं, किस कदर पुराने हैं हम नए ज़माने में, और तेरे पास आने में आधी उम्र गुजरी है, आधी उम्र गुजरेगी तुझसे दूर जाने में। रानी जी सलाव से, वीना जी, नाहिद जी आपके जवाब सही हैं, शकीला जी, किरत जी और इरफान जी जवाब सही नहीं है, लेकिन आपके मैसेजेस के लिए बेहद शुक्रिया। दीवाना दीवानी गीतों में कॉमन रहा, बहुत सारे लोगों ने बूझा, वेल डन। बहुत सारे लोगों ने नहीं बूझा तो भी वेल डन। अब अगले दो गीत सुनते और सुनवाते हुए हम बढ़ेंगे खबरों की जानिब, और खबरों के उस पार आई बी वेटिंग।
1: Anissa Nasir with The Big Show, weeknights from 7 PM. Like a gold. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
0: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल, कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ।
2: अपना बनाया तेनू,
0: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का। वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफर्ड टाउन हॉल में, और थर्सडे 17 सितंबर इल्फर्ड टाउन हॉल में। टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20। VIP एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216। टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट, 407 हाई रोड, इल्फर्ड।
3: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
4: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
3: Southall Travel.
4: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
3: Southall Travel can take you there.
1: Southall Travel, at all protected.
5: Two businesses,
6: same town,
5: same service.
6: One appears on page one of Google,
5: the other doesn't.
6: Guess which one gets the customer?
5: The truth is brutal.
6: The first page of Google gets the business.
5: Everyone else gets what's left.
6: So here's the real question.
5: When your customers search for what you sell, do they find you?
6: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
5: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
7: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
8: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
7: ये तो बताओ, कोई पता चला?
8: गुरु गुरु,
9: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
7: साधू, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
10: शीघ्र शीघ्र।
9: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर। टू बुक कॉल 0208 514 5400। Book online at Eventbrite.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
13: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
0: Minar Jewelers. Agar aap sona bechna chahte hain ya valuation karwana chahte hain, to uski sahi qeemat ke liye tashreef le jaiye Minar Jewelers par. 181 Upper 2 रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
14: sonajewelers.co.uk स्पेशल ऑफर, हॉलिडे ऑफ अ लाइफटाइम विद अमेजिंग डिस्काउंट। 14 डेज कनेडियन रॉकीज एंड अलास्का क्रूज इन 2027। बुक बिफोर द एंड ऑफ सितंबर एंड गेट 400 ऑफ और लूज द डिस्काउंट। कॉल सोनाटूर्स नाउ ऑन 0208-951-0111।
1: एशियन अचीवर्स अवार्ड्स फ्राइडे सितंबर 18th एट लंदन हिल्टन पार्क लेन। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Leica Radio, Greater London.
15: Anissa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 PM.

0: हरगिज़ हरगिज़ नहीं डरना चाहिए, बल्कि कह देना चाहिए कुछ इस तरह के, रंजिशें भूल के बैठें कहीं दोनों, रंजिशें भूल के बैठें कहीं दोनों, अपने हाथों से पिला खैर सगाली चाय, इश्क भी रंग बदल लेता है जाने अहमद, ठंडी पड़ जाए तो हो जाती है काली चाय। उफ क्या जालिम चाय याद आई है। Anyways, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपका खैर मकदम है, और मुझे पता था उमर जी, मुझे पता था आप कहेंगे ओवरफ्लोज, ओवरफ्लोज चालू हैं। क्या बात है उमर जी, मतलब बातें तो कोई आपसे सीखे। बेहद शुक्रिया, ऐसा कुछ नहीं है, गीत किसी ने सुनना चाहा था, मैं सुनवा नहीं पाई, तो मैंने सोचा मौके से फ़ायदा उठाते हुए इसे शामिल करें। और तो और, निमी जी ने दिए गीत की फरमाइश कर रखी है, आई विल सी एंड इफ़ नॉट टुडे देन निमी जी दो कल डेफिनेटली, बशर्ते ज़िंदगी। और यहाँ पर पीटर जी पूछ रहे हैं कि दाँ उदा ही जी, बिल्कुल खैरी से हूँ फवाद जी, बेहद शुक्रिया, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। डॉक्टर अशोक पटेल जी आपका भी बहुत सारा धन्यवाद। और आप प्रोग्राम के इस हिस्से में आप जानते ही हैं कि उल्टा पुल्टा होता है, चंद अल्फाज हम आप तक पहुंचाएंगे, फिर आपसे बुझवाना चाहेंगे। क्या हो गया अनीसा? अच्छा, तो क्या है कि आप बताएंगे कि हम कौन से गीत की बात कर रहे हैं। फिलहाल तो ये सिलसिला लंदन, £1 in British sterling can get you up to 127.3 Indian rupees today. और याद रहे exchange and branch online या फिर SBI YONO mobile app के जरिए। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और अब वो अल्फाज जिन्हें आपको गौर से सुनना होगा, बार बार दोहराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आई विल स्टिल ट्राई। कस्में खाई सुख की खातिर,

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: अरे सुदास से गीत को सुनकर कितने लोग खुश हो गए, तेरी आंखों के ख्वाब बच जाए. अमिता जी आपके नाम. तेरी आंखों के ख्वाब बच जाए, हमने सिर्फ इतना ध्यान में रखा. खुद तो रहते थे दर बदर, लेकिन तुझको रब की अमान में रखा. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. जिस जिसको अच्छा लगा भी, उन सभी के नाम कर रही हूँ मैं इस प्यारे से गीत को. और आप जानते ही हैं कि फरमाइशों का सिलसिला जो है वो ट्यूसडे हम चलाते हैं, ट्यूसडे टिल फ्राइडे. तो इंशाल्लाह इस वीक में भी इसी तरह की जो है रूटीन हमारी रहेगी. साथ निभाइएगा, रेडियो से दूर मत जाइएगा. अगर तुम्हारा इशारा है तुमसे दूर रहूं, अगर तुम्हारा इशारा है तुमसे दूर रहूं, निगाहें इश्क के रिश्ते को तोड़ देता हूं. कसम तुम्हारी मोहब्बत भरी निगाहों की, जो तुम कहो तो ये दुनिया ही छोड़ देता हूं. लेकिन एक बात मुझे बताएं, डॉक्टर जाफर अस्करी जी का कहा ये कलाम है, लेकिन अगर किसी को मोहब्बत होगी, अगर आपको मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा होगा, तो वो इस रिश्ते को तोड़ने को कहेगा ही क्यों.
3: ये है लाइका गोल्ड.
0: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ऑल ट्रैवल.
2: साउथ ऑल ट्रैवल इज नोन फॉर इट्स कम्पेटिटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई. छुट्टियां भी मेरी फेवरेट और डेस्टिनेशन भी. लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको. कॉन्टैक्ट कीजिएगा साउथ ऑल ट्रैवल को आज ही ऑन 0208574 8410. साउथ ऑल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड.
0: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: और अभी तो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स के वेलकम मैसेजेस ही खत्म नहीं हुए. तभी से मैं छुट्टी का मतलब जिक्र भी कैसे करता हूँ. हाउ डेयर यू अनीसा. और अब आप ही लो. अब रेशमा जी ने हमें बताया है कि आज अली जी अटलांटा में अपनी सालगिरह मना रहे हैं. उन्होंने खुद नहीं बताया कि कहीं हम केक शेक ना मांग लें. भाई आप खुद ही देखो, इतनी दूर से केक भिजवाना पॉसिबल भी नहीं था वैसे तो. लेकिन बहरहाल जो भी वजह रही हो, हम आपको दिल की गहराइयों से सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे हैं. और मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि आप रेशमा जी कह रही आप खुद ही कोई गीत सुनवा दें. भाई अब मैं गीत सुनवा दूँ, अली साहब कुछ गलत मतलब ले लें, या अली साहब ना भी लें, आप ले लें, तो फिर क्या होगा. तो इसलिए मैं कह देती हूँ, भाई ये गीत जो है मेरी तरफ से हरगिज़ नहीं है, हम सब की तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, लेकिन गीत रेशमा जी की तरफ से.
0: It's summer on the Leica Radio Network.

0: बहुत सारे लोगों इंक्लूडिंग माई सेल्फ का बहुत ही प्यारा सा फेवरेट सा गीत हमने बड़े प्यार से नाम किया अली जी के, जो आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं अटलांटा में। रेशमा जी खास तौर पर ये गीत आपकी जानिब से। लीजिए अब गीतों के बातों के ये सिलसिले को आगे बढ़ाएं और एक दफ़ा फिर से अल्फाज दोहरा देते हैं। कस्में खाई सुख की खातिर दीवाने का गम। सबसे पहले कविता कुमार जी जर्मनी से आपने सही जवाब भिजवाया, यू आर द रानी ऑफ द आवर। लुबना जी ने लाहौर से, गीता हर्षद जोशी जी, विजय गुडूरी जी, कुलबीर सिंह जी रानी जिसलाव से, गुल जी मुझे पता है आप ऐसी हैं और आप ऐसी रही है, बहुत अच्छी हैं आप, फरजाना जी, संध्या भावसर जी, मीनाक्षी ब्रह्मभट जी, सलमान जी, गुरसरनजीत जी, रजनीश जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पम्मी जी कह रहे हैं रौनक आ गई। हाँ जी मैं आ गई हूँ, मैंने भी किया ना, आई होप सो, थैंक यू सो वेरी मच। और शगुफ्ता जी कह रही हैं गीत सुनवाने के लिए बेहद शुक्रिया। अरे यू आर मोस्ट वेलकम जी।
1: ये है Like a Gold।
2: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन Like a Gold रेडियो, Like a रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड Like a रेडियो मिडलैंड्स पर।
1: Like a एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
0: आपको बता दें इस एपिसोड के बारे में जो है 32nd एपिसोड लाइका एक्स्ट्रा की, और इसमें मेहमान हैं जनाब मोहम्मद वकील साहब, होस्टेड बाय रवि शर्मा जी। उनके म्यूजिकल जर्नी के बारे में सुनिए, उनकी लेजेंडरी जगजीत सिंह जी के साथ हुई मुलाकातें और जावेद अख्तर जी के साथ उनकी गपशप के बारे में। ये वही वकील मोहम्मद हैं जो आया तेरे दर पर दीवाना बहुत ही प्यार से उन्होंने गाया, और उसके अलावा भी वो जो भी गाते हैं बहुत प्यार से गाते हैं। जनाब मोहम्मद वकील स्पेशल लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट जो है वो अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजॉन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। दिस इज अनीसा नासिर विद द बिग शो। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Jasmine.
5: Oh, terrible weather.
4: It's raining cats and dogs out there and she doesn't want to look like a drowned rat for an interview. You help Jasmine stay dry and we'll help keep you covered.
6: See ya, good luck with the interview.
5: Thank you, bye.
4: Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
7: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
8: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
7: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
8: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
9: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
10: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
11: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
6: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
12: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटेटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
6: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटेटो चिप्स नाउ।
13: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Feel Good Classics with Anissa Nasir.

0: 1962 की फिल्म नकली नवाब का बहुत ही असली गीत आप सबके नाम, और आप ये सुन लीजिए फिर खुद ही फैसला कर लीजिए इश्क भला है या नहीं है। तन्हा छोड़कर हमें हौसला भी देते हैं, सांस छीन कर जीने की दुआ भी देते हैं, एक तरफ जुदाई का तज़किरा भी जारी है और एक तरफ मुस्कुराने का मशवरा भी देते हैं। ये भला है ये क्या है, कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं।
1: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta hai 128 Indian rupees, 88.5 Afghani, 375.7 Pakistani rupees, 166.2 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £104.80 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: हमारे उल्टे पुल्टे को लेकर ये आखिरी नाम है जो मैं बता रही हूँ। सही जवाब भिजवाया है उल्लास जी ने टोरंटो से, और पंजाबी तड़के का टाइम है। उसके बाद हम सुनवाएंगे आपको वो गीत जो बहुत सारे लोगों ने पूछा। बेहद शुक्रिया आप सभी का। और रेशमा जी, मतलब माड़ी सी रसीदी भिजवाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि थैंक यू शैंक यू नाम की कोई चीज़ भेजिए, लेकिन ये तो बता दीजिए कि आपने और अली जी ने वो गीत सुन लिया। काफी लोगों की बढ़ास निकली वैसे वो गीत सुन के, सच्ची कह रही हूँ।
1: Non-stop classics, classics like a gold. पंजाबी तड़का with अनीसा।

0: सोबत खान जी, ये बरासा गीत आपके नाम करते हैं, जब जब ऐसा कोई गीत प्रोग्राम में शामिल होता है तो वो आपका मैसेज ज़रूर आता है, बेहद शुक्रिया साथ निभाने के लिए। और लीजिए रेशमा जी का और साथ साथ अली जी का भी मैसेज आ गया, रसीद चाहिए होती ऑनेस्टली, आई वॉजन लुकिंग फॉर थैंक यू मैसेज, लेकिन दिल चाह रहा था कि मतलब ये जान लूँ कि जो आपके लिए ख़ास तौर पर सुनवाया गया वो आपने सुना या नहीं। लीजिए अब ब्रेक के उस पार आप सुनेंगे आज का उल्टा पुल्टा, लेकिन बिल्कुल सीधा साधा हो गया है वो और आपके कानों तक पहुंचेगा, फ्रॉम द मूवी विश्वास 1969 की फिल्म, गाने वाली आवाज बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप ऑलरेडी जानते हैं, बल्कि कुछ लोग तो शायद गुनगुना भी रहे होंगे। आई विल सर्टेनली डू दैट। सुने,
1: दिस इज अ निसन नेसे विद द बिग शो। This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
2: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Thomas.
3: Taxi!
2: He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
4: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल At all protected.
6: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
1: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208-507-7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours on 0208-951-0111.
1: Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk. Anissa Nasir with The Big Show, weeknights from 7 p.m.

0: तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। अब साथ साथ स्टेशन होंगे तो लगेगा ना कि जहाँ भी जा रहे हैं हमारी ही महफिल है, हमारे ही अपने सुन रहे हैं और हमारे ही अपने सुनवा भी रहे हैं। तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते, तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते, किसी दिन उसके दर पे रख से वहशत क्यों नहीं करते। तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते, किसी दिन उसके दर पर रख से वहशत क्यों नहीं करते। इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना मोहब्बत क्यों नहीं करते। और हमें तो सिवाय मोहब्बत के और कोई काम भी नहीं आता, क्यों अंजुम जी? अमेरिका से तशरीफ लाई और जब से आई हैं मिलने की कोशिशों में लगी हैं, लेकिन मुमकिन ही नहीं हो पा रहा। अंजुम जी इंशाल्लाह दिल आपने छोटा नहीं करना, हम ज़रूर मिलेंगे एक दिन। और अली जी और रेशमा जी आए थे अटलांटा से, वो बेचारे नहीं, मैं बेचारी मिल नहीं पाई उनसे। अब नेक्स्ट ट्रिप कब है आपका रेशमा जी और अली जी? रेशमा जी अब ऐसा क्यों नहीं करती बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उन्हें यूके टूर दे दें आप? नहीं हो सकता वैसे। अंजुम जी कह रही हैं बिल्कुल सही कहा, एक अल्लाह कुलों में डर दी, एक मौला कुलों में डर दी। वो कहते हैं रिहा तारीख लम्हों की कमंदों से किया मुझको, खुदा के खौफ ने बेखौफ बंदों से किया मुझको। और ये लो जी सुन लो, चौधरी फरीद अहमद साहब कह रहे हैं अभी अभी सुनना शुरू किया है। अब मैं क्या कहूँ आपको, भी प्रोग्राम तो वैसे 7 बजे शुरू होता है, तो मुझे वो स्टूडेंट याद आ गया, स्कूल पहुँचा तो टीचर ने डांटा और कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि स्कूल जो है वो 7:30 शुरू हो जाता है। तो उसका जवाब था कि मैडम आप स्कूल शुरू कर लिया करें ना, मेरा इंतज़ार क्यों करती हैं, मत किया करें।
1: Lisa Nasir, live across Greater London with the Big Show. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 127.3 Indian rupees today. Don't forget to exchange in branch, online, ya phir SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: Aur Hansa Bora ji, aapke pyare se message ke liye shukriya. Roz hi aap yaad karti hain aur Didi Advani yani ke Bharti ji भी प्यार से प्रोग्राम सुन रही हैं और जवाब नहीं कमेंट सुन के जो हैं वो आ रहे हैं, जो कि इस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। मुजम्मल जी थैंक यू सो वेरी मच, मैंने कहा ना कि अभी तो वेलकम मैसेजेस ख़त्म नहीं हो रहे, कितने उदास थे कितने नहीं थे, क्या कहूँ अब आपको, शुक्रिया बहुत छोटा सा लफ्ज़ है लेकिन थैंक यू।

0: और ये फुल ऑफ लाइफ गीत हमने लिया था फिल्म उजाला से, 1959 की फिल्म। गाने वाली आवाजें लता जी और वन एंड ओनली मन्ना डे जी की। और गुरमीत सिंह बच्चू जी को बहुत अच्छा लगा, गुरमीत जी आप ही के नाम करते हैं इस प्यारे से गीत को, आर्टिस्ट ऑफ द वीक मन्ना डे जी। कितने रंग कितने रूप उन्होंने अपनी आवाज के जरिए दर्शाए हैं, दिखाए हैं, वो हम सब अक्सर बेशतर आपको सुनवाते रहते हैं, लेकिन इस वीक में तो वो छाए रहेंगे। और अब आगे बढ़ने से पहले आप तक एक मैसेज पहुंचा दूं, TCO आपके लिए लेकर आ रहे हैं उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब को, अ ट्रिब्यूट टू हिज अंकल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, जिन्होंने उन्हें बेटे ही की तरह परवान चढ़ाया उनकी 30th डेथ एनिवर्सरी के मौके पर। सिर्फ एक ही डेट है दोस्तों, एक ही शो है, संडे 18 अप्रैल 2027 @O2 London। रेडियो पार्टनर्स लाइक अ रेडियो, सो ये डेट जो है वो आप अपने दिलों पर लिख लीजिए।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।

0: हर हाल में हंसने का हुनर पास था जिनके, हर हाल में हंसने का हुनर पास था जिनके, वो रोने लगे हैं तो कोई बात तो होगी। कहते हैं कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं, आपको सिर्फ हकीकत तक ले जाते हैं। कुछ रिश्ते खाली लिफाफों की तरह होते हैं, फिर भी ना जाने क्यों हम उन्हें संभाल संभाल कर रखते हैं। ये गीत आप तक पहुंचाया डेरी वैली ने।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और अब एक मैसेज मेरी जबानी भी हो जाए, और ये मैसेज है दोस्तों बिग बॉस के सिलसिले का। आप तो जानते ही, बिग बॉस इज बैक, 20th सीजन है दोस्तों बिग बॉस का, और होस्टेड बाय सलमान खान। मेरा ख्याल है शो की ज्यादा जो फेमस पॉपुलर होने की वजह है वो सलमान खान जी की डांट झिड़के और बुरा भला कहना वो सब कुछ है। द शो एयर्स एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जियो हॉटस्टार इज स्ट्रीमिंग एवरी एपिसोड अलॉन्ग विद अ लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस के जो हाउस है, 20 हाउस, वहां से। तो जियो हॉटस्टार इज नाउ ऑल्सो अवेलेबल एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी।
3: Hello there, my name is Deep Raja and I do the Weekend Breakfast Show from 7 AM Saturdays and Sundays, like a gold in London, the Midlands and Manchester.
4: Anissa Nasir with The Big Show, weeknights from 7 PM. Like a gold. TravelHubWorld.com
5: Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays hum se sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
7: At all protected.
8: Visit TravelHubWorld.com.
9: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96, एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
10: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
11: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
10: ये तो बताओ, कोई पता चला?
11: गुरु गुरु,
12: इस 6 November को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 November।
10: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
12: शीघ्र शीघ्र। क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6 November।
13: टू बुक कॉल 0208-514-5400। Online at Eventbrite.
14: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
15: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
16: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
17: 11, 11.
18: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
19: Dubai is the place.
18: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
20: Danube 11, 11. Danube Properties. 11.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham wide on full scale DAB digital radio.
21: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: अपनी आंखों में बसा कर कोई इकरार करूं फिल्म ठोकर का सर आंखों में रखने वाला गीत 1974 की फिल्म और कहते हैं कि इतना चाहा तुझे तू है अब दस तरस में मेरी मेरी पहुंच में है इतना चाहा तुझे तू है अब दस तरस में मेरी तेरी आहटें गूंजती हैं समातों में मेरी बंद आंखों से भी दिखाई देता है मुझे तू समा गया है इस कदर बसारतों में मेरी और मीनाकारी जी कुछ लिखने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं आपका भिजवाया हुआ मैसेज अभी तक जो है वो पूरा स्क्रीन पर आया नहीं है और यू आर टाइपिंग समथिंग आई कैन सी दैट अटलांटा में हमें सुनती हैं और पता नहीं क्या कहना चाह रही प्रोग्राम ख़त्म हो जाना है आपका ये जो लव लेटर है ना ये नहीं मुझे लगता लिखा जाना जल्दी से लिखें
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta 375.8 Pakistani rupees, 88.6 Afghan Afghani, 128 Indian rupees, 166.2 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £104.80 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: भी आखिरकार पहुंच ही गया मीना जी आपका मैसेज हम तक बेहद शुक्रिया थैंक यू सो वेरी मच लव यू टू जैस्मिन जी हमेशा ही की तरह आप भी साथ निभा रही हैं और इस बात का एहसास भी दिला रही हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपके मुन्ने से मुख्तसर से मैसेजेस जो हैं वो बहुत मानी रखते हैं हमारे लिए सो कीप देम कमिंग थैंक यू अंसर जी आपका भी शुक्रिया आप भी सुन रहे हैं और सईदा जी वेल डन टू योर ग्रैंड डॉटर बेहद खुशी हुई अच्छे रिजल्ट्स आए बच्चों के बहुत बहुत मुबारक जी सी एस की बात करें हम और तारिक राहिल जी ये गीत ही ऐसे हैं ये दिल को छू जाते हैं आप कभी ना चाहते हुए भी जो है थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं जिंकिया जी आई नो थैंक यू बेहद शुक्रिया कह रहे हैं कि आज मैं बहुत दिनों के बाद इवनिंग शो सुन रहा हूं, तो आपकी आवाज़ सुनकर मुझे खुशी भी हुई और बहुत अच्छा लगा थैंक यू और लीजिए अब आप बाकी के प्रोग्राम का लुत्फ उठाइए गोल्ड नाइट के म्यूज़िक का लुत्फ उठाइएगा मॉर्निंग में काजल हाजिर हो जाएंगी फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए बशर्ते ज़िंदगी कल मिलती हूँ शब खैर शुभ रात्रि गुड नाइट रब सोने दे हवाले
1: दिस इज़ द LEICA रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स फ्रॉम लॉलीवुड विद लव With Anisa.

0: Gold Nights on Like a Gold.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
3: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
4: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
5: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
4: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
5: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
4: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
7: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02023736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स Your travel mantra.
8: Big Boss में इस बार मिलेगा बरदान और एक्स्ट्रा जीवन दान। तब हंस तूने जान।
0: Big Boss Season 20 every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss House exclusively on Jio Hotstar.
9: We're finally going home for the wedding.
10: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
9: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
10: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
9: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
10: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
9: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
11: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
12: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
13: Leica Gold par har raat ki yahi reet. Purane magar sada bahar geet.

0: Like a gold. One performer.
1: Countless personalities.
2: जिंदगी बर्बाद हो गया.
1: A whole universe of entertainment.

0: ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथाउल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथाउल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथाउल ट्रेवल Protected.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
2: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee. Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
3: The cycle of love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
4: I left behind everything I knew.
3: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
4: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
3: The cycle of love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
5: You know how fans shout at football matches?
6: Oh, wake up!
5: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
7: Like a gold par har raat ki yahi reet. Purane magar sada bahar geet.